0: round up, mate.
1: Thanks.
2: अरे थैंक्स काइका, I love to drive.
1: ओ नहीं उसके लिए नहीं, आज तुमने किया. पर्सनली मुझे फाइट फाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन I felt happy.

0: एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, मैं तुम्हें कॉफी पिलाना चाहता हूँ। अच्छा पहले फिल्म पे कहो।
1: विकी, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो उतने हो नहीं। अच्छा वहाँ ना किसी को बाहर ले जाए, पुराना है। बेटर लक।

0: dates and go on the miss.
1: तुम तो जानती हो ना मेरे पास अखबार में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दोस्तों हाँ देखा सब कुछ बोल दिया मैंने इसको कुछ छुपाया नहीं
2: कम ऑन मैन आई रियली लव हर क्योंकि आई लव यू यू आर द बेस्ट गाय इन माय लाइफ.

तुम्हारा दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है। हर तरफ तुम्हें ढूंढता है, सिर्फ तुम्हें चाहता है, चाहता है, चाहता है, चाहता है, चाहता है, सिर्फ तुम्हें चाहता है, चाहता है।

जब से मिली हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना। दिल ने